0: I'm going to be clear, very clear with you. You know, this is a simple noise, you know, which can bother someone, according to me. So in Dogon country here, not in Mali, you know, not in the in the world, you know, there are some person, if they sleep, you know, they have a kind of noise. Some person dislike this. This is, I think it's the same. This is to bother people. Really.
1: मशीन सोगरे मोटो बनाया कर दिया कर मशीन सोगरे मोटो बनाया कर दिया कर चले मोबाइल बनाई हो रहता है क्या क्या मोबाइल बनाई हो रहता है क्या क्या मोबाइल बनाई हो रहता है क्या क्या सु अब रहा क्या कर
2: कल
1: आने के लिए मीर अन क्या कर
2: आने के लिए मीर
1: कल मोबाइल आ गया मोबाइल ये आ गया मोबाइल आ गया सु अब रहा क्या कर
3: Arka
1: mo posa. Jobangere. Kane kidare zit. Bot. Kane. Jobangere.